यातनाएं, कठिनाइयां, अत्याचार, कोई भी मुझे आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हम कहां जाएं प्रभु, हम किसके पास जाएं, सिर्फ तू ही हमारा प्रभु है। यीशु तू मेरा प्रभु है, तू हम सब